0: बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has become the longest serving elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He has surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest serving elected Prime Minister in India's history. World leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister of the country. The world leaders hailed Prime Minister's transformative governance, his advocacy for the Global South, and his vision of an inclusive and economically dynamic India. President of Sri Lanka Anuradha Kumarasinghe in a letter said that Prime Minister Modi's vision has inspired many beyond India's borders, including Sri Lanka. Prime Minister of Papua New Guinea James Marape in a personal video message described Prime Minister Modi as a role model and an example of leadership.
3: Hello and greetings from Papua New Guinea to my friend Prime Minister Modi. Congratulations on reaching a historic milestone, the longest continuous Prime Minister of the great country of India. You have now surpassed the record as the longest serving Prime Minister of India. India remains a friend of Papua New Guinea. You personally have come here. I give respect to you as a senior leader of the Global South, and I am happy that you have now hold record as the longest serving Prime Minister of India.
2: Further, Prime Minister of Trinidad and Tobago Kamala Prasad Bisesar noted that under the leadership of Prime Minister Modi, India has evolved as a leading voice on global matters. A meeting of the National Democratic Alliance NDA will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. All constituents of the alliance besides the top leadership of the BJP including Prime Minister Modi are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on a two-day official visit to Bulgaria and Finland starting today. The Ministry of External Affairs said that during his visit to Bulgaria, Dr. Jaishankar will meet the Bulgarian leadership and hold discussions with his counterpart. On the second leg of his visit to Finland, Dr. Jaishankar will attend the 14th edition of the Kularanta Talks. The theme of this edition is A World in Transition, Global, Regional and Local Perspectives. The minister will also hold meetings with his counterpart and leadership of Finland. The US military has launched strikes against Iran in response to the downing of a US Army Apache helicopter off Oman coast. US officials said the helicopter was brought down by an Iranian drone and the two pilots were rescued. Following the US strikes, explosions were heard in the Iranian cities of Sirik, Minab, Bandar Abbas and on Keshem Island, which bordered the Strait of Hormuz. President Donald Trump said the US response to Iran downing a US helicopter is very strong, very powerful. Iran has also launched missiles and drones towards U.S. targets in the region. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said that no attack from the U.S. will be left unanswered. Iranian Foreign Minister asked foreign forces to leave Strait of Hormuz or be at constant risk. In men's cricket, India A defeated Sri Lanka A by 8 runs in a close contest in the opening clash of Tri-Nation A series at the Rangiri Dambulla International Stadium in Sri Lanka yesterday. Opting to bat first, India scored 277 for 6 in stipulated 50 overs, riding on Rituraj Gaikwad's 101 runs. Fast bowler Mohammad Siraj has been withdrawn from India's squads for the upcoming T20 international series against Ireland and England. The men's selection committee has named Prasidh Krishna as Siraj's replacement for both T20I series. And that is the end of this news bulletin.
4: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টসে এবং নিউজ অন এআইআর অ্যাপে। এখন জানিয়ে দেব আজ সারাদিন গীতাঞ্জলি ও সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে

इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है, उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूँ, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन

0: हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान

0: पर जवाबी हमले किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने की

0: लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून

0: तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
2: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोह मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम साइरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push, new framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruthuraj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days.

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। 9:48 आपकी दोस्त सविता सभी दोस्तों का स्वागत करती है कार्यक्रम रस धारा में।

जी हाँ दोस्तों, ए बी सी डी छोड़ो, बिल्कुल ए बी सी डी तो छोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन हाँ ए बी सी डी के साथ यदि गुणवत्ता है तो बस उसकी उत्कृष्टता बनी रहती है। दोस्तों आज की थीम हमारी रसधारा की यही है, गुणवत्ता यानी क्वालिटी और एक्सीलेंस दोनों में आपस में गहराई से जुड़ी हुई ये अलग अलग अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। गुणवत्ता मानकों को पूरा करने और भरोसे से बनाए रखने के बारे में, जबकि उत्कृष्टता है सामान्य मानकों से आगे बढ़कर असाधारण परिणाम देना और नवाचार देने का प्रयास करना। तो दोस्तों आज हम यही बात करने वाले हैं कि गुणवत्ता यानी व्यवसाय यदि आप करने जा रहे हैं या फिर कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसमें गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए और उत्कृष्टता को समझना हमारी महत्वाकांक्षी अवधारणा है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और ये चीज़ें हमें पाठशाला में ही सिखाई जाती हैं।

जी हाँ दोस्तों, यदि गुणवत्ता का सामान्य अर्थ हम यदि माने तो किसी वस्तु, सेवा या कार्य की उत्कृष्टता, विशेषता या स्तर है। यदि आप इसे 1 से 10 के पैमाने पर माप रहे हैं स्केल पर, तो ये गुणवत्ता का अर्थ है। 10 तक आता है तो ये सर्वोच्च और सर्वोच्च स्तर की गुणवत्ता है। वहीं उत्कृष्टता का मतलब होता है असाधारण या बेहद अच्छा गुण होना। एक प्रतिभा या गुण जो असाधारण रूप से अच्छी हो और सामान्य मानकों से कहीं बढ़कर के हो, तो वो आती है उत्कृष्टता की स्थिति में। तो आइए, बातें तो और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल खोलो खोलो।

जी हाँ दोस्तों, खोलो खोलो, अभी आपने सुना ये गीत रंग दे बसंती से रमन महादेवन की आवाज़ में। दोस्तों, जीवन की गुणवत्ता और उत्कृष्टता हमारे समग्र कल्याण और मानसिक शांति और व्यक्तिगत विकास की नींव है। ये जीवन को केवल जीने के बजाय एक सार्थक अनुभव में बदलती है, जिससे आत्मसंतुष्टि मिलती है, उत्पादकता बढ़ती है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। ये मापती है कि आप अपने जीवन में कितनी खुशी, शांति और संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं, और ये अच्छे स्वास्थ्य, तनाव मुक्त जीवन को भी सुनिश्चित करती है। साथ ही हमारे जो परिवार में संबंध है, जो सामाजिक रिश्ते हैं जीवन के, वो मजबूत होते हैं और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। साथ ही सुरक्षित, स्थिर आर्थिक स्थिति मानसिक तनाव को भी कम करते हैं। तो कहते हैं ना कि कोई भी कहे, कहता रहे, हमको वो करना है जो हमारी ज़िंदगी को गुणवत्तापूर्ण और उत्कृष्ट बनाती है।

जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच है कि अभी के समय में, अभी जब समय बदल रहा है, तो किसी भी कार्य को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए लगातार सुधार करने की मानसिकता है, ना कि लगातार बुकिश रीडिंग की। आत्मविश्वास का निर्माण करना है। उत्कृष्टता के प्रयास से कौशल में वृद्धि होती है और आत्मविश्वास मजबूत होता है। सफलता और पहचान भी मिलती है। इससे पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन की सफलता की कुंजी है ये उत्कृष्टता। निरंतर विकास होता है। जहाँ ठहराव रोक लेती है, वहीं जीवन भर उत्कृष्टता हमें सीखते रहने की प्रेरणा देती है। तो दोनों का मिला जुला प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और ये एक बेहतर शैली की ओर ले जाता है। बातें हम और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल फिल्म बॉडीगार्ड से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि गुणवत्ता और उत्कृष्टता शब्दों में नहीं नापी जा सकती। जीवन की गुणवत्ता एक व्यक्ति परक माप जहाँ है, और वित्तीय यानी आर्थिक सुरक्षा है, नौकरी की संतुष्टि, स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों से प्रभावित होती है। जीवन यापन की जो हमारी कॉस्टिंग है, जो हम एक समय बिताते हैं, स्वास्थ्य सेवा और संपत्ति की वह

नियता जो होती है जैसे कारक जीवन को और अधिक क्वालिटी को अट्रैक्ट करते हैं और उसको प्रभावित करते हैं। जीवन की सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले देशों में यदि हम देखें तो कुछ ऐसे देश हैं जो जीवन को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले देशों में जाना जाता है, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, डेनमार्क, ओमान। सरकारें भी बेहतर सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से जीवन को अधिक सुधारने की कोशिश करती हैं। जीवन की गुणवत्ता व्यक्तिगत मामला है, लेकिन इसमें आमतौर पर अच्छा स्वास्थ्य, रिश्ते और भौतिक सुख सुविधाएं शामिल होती हैं। तो जीवन को कि मैं भोजन, आवास जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी जुड़ी रहती हैं और चिंताओं से मुक्ति मिलती है और भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण मिलता है। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि यदि गुणवत्ता वाला जीवन है तो हमें नौकरी में भी संतुष्टि मिलती है और यह हमारे लिए एक ऐसा स्तर तय करती है जहाँ पर कि हमारा जो वेतन है, जो हमारी सैलरी है, वो भी उसके महत्व से जुड़ जाता है और हमारे जीवन के अन्य पहलू भी इससे जुड़ जाते हैं और प्रभावित होते हैं।

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम रंजधारा आप सुन रहे हैं सविता के साथ, और बात हम कर रहे हैं गुणवत्ता की, उत्कृष्टता की। कई बार अक्सर लोग अपने अभिमान में, अहंकार में अपनी ऊंचाई को की जो माप है उसको दिखाने लगते हैं, तो ऐसे में हमको कहना है कि तुम वो रखो अपने पास, हमारे पास हमारी जिंदगी है, हमारा दुख है, हमें उसे बेहतर करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगा कर्मसु कौशलम, माने बेहतर काम चुनूंगा और उस बेहतर काम को रोज बेहतर तरीके से करूंगा, क्योंकि कोई चमत्कार नहीं होता। अचानक से उड़ करके छलांग मारकर कोई ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, सीढ़ी दर सीढ़ी लगातार ऊपर चढ़ते हुए ही उत्कृष्टता हासिल करनी पड़ती है। तो ये है एक सोल्जर की, एक सैनिक की, जो कि अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ता है, युद्ध को जीतता है, फतेह करता है।

0: दोस्तों ये गीत आपने सुना फिल्म सोल्जर से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में, गीतकार समीर और संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसधारा, मैं हूँ सविता पोद्दार। और कार्यक्रम के अंतिम दौर में हम पहुँच चुके हैं। 12 बजे सुरभि कार्यक्रम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अभी हम हैं, अंतिम गीत आपके लिए प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: जी हाँ दोस्तों, 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रस धारा। और आइए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाएंगे फिल्म धड़कन का ये गीत, उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में, गीतकार समीर, संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने। और इसी गीत के साथ आपकी दोस्त सविता पोद्दार फिलहाल आपसे चाहेगी इजाज़त। मुलाकात होने वाली है हमारी और आपकी सुरभि कार्यक्रम में 12 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मुस्कुराते जरूर रहिए। चलते चलते आपके लिए दिल ने कहा है दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा मंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में कहा कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। उन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और पहचान पर गर्व को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र और जनता के विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मविश्वास, सुशासन और विकास पर आधारित एक नई पहचान दी है। एक दैनिक समाचार पत्र में लेख में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के विकास, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और वैश्विक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी का उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना और श्रमिकों को बिना किसी रुकावट के रोजगार प्रदान करना है। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मीनाब, बंदर अब्बास और केशन द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हरा दिया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. United States Ambassador to India Sergio Gore today congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming the country's longest-serving elected Prime Minister. In a social media post, Mr. Gore said that this achievement is a powerful testament to Prime Minister Modi's decades of dedicated public service and leadership. A meeting of the National Democratic Alliance will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. Our correspondent has more details on the meeting.
3: All constituents of the alliance beside the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: The centre has unveiled 1.25 lakh crore rupees push for rural development in the country. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan said that the central government has already allocated 30,000 crore rupees under MG Narega. He said, in addition to this, an interim allocation of 95,692 crore rupees has been released to states and union territories. With this, the total allocation will exceed 1.25 lakh crore rupees. Mr. Chauhan said this after chairing a virtual meeting of state rural development ministers regarding the implementation of Viksit Bharat Ji Ramji. The act will come into force across the country with effect from 1st of next month. The government has refuted several social media posts falsely claiming that the Reserve Bank of

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। पेश खिदमत है रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। माइक्रोफोन पर हाजिर है आपकी मेजबान सादिया सदफ। तमाम सुनने वालों को सादिया का प्यार भरा आदाब। खुलूस उन्स की फैली है खुशबू, सजी है अंजुमन उर्दू जबां की। अंजुमन का आगाज आईने के साथ, आज का आईना है बलराज भल्ला के यौम पैदाइश पर। तहरीके आज़ादी के मतवालों में एक नाम बलराज भल्ला का भी है जो 10 जून 1888 को गुजरांवाला गैर मुनकसिम भारत में पैदा हुए थे। बलराज भल्ला ने महज 17 साल की उम्र में जद्दोजहद आज़ादी में शमूलियत इख्तियार की। वो दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे रहनुमाओं से बहुत मुतासिर थे, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इनकलाब का रास्ता चुना। बलराज को वासराय लॉर्ड हार्डिंग के कत्ल की कोशिश में कैद किया गया था। उन्होंने सियासी कैदियों के साथ मुनसिफाना सलूक और पहचान का मुतालबा करते हुए भगत सिंह के साथ तारीखी भूख हड़ताल में भी हिस्सा लिया था। मजीद आज तहजीबों के दरमियान मुकालमे का बैनुल अक्वामी दिन भी है जिसे अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली की एक करारदाद के जरिए कायम किया गया। ये दिन तहजीबी तनवो के एहतराम और तआवुन से तसादुम को बदलने और एतमाद पैदा करने के लिए खुले राबते के इस्तेमाल की अहमियत को उजागर करता है। इस दिन की तकरीबात में आलमी सतह पर आला सतही मीटिंग, सकाफती नुमाइशें और फोरम्स, काबिल जिक्र वाकयात और सरगर्मियाँ शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी आईने में शामिल खबरें और इसी के साथ समाप्त करें हुब्बुल वतनी से भरपूर एक दिलकश नगमा। अरको और बीपरा की आवाज़ों में फिल्म सत्यमेव जयते से

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अपनी मेजबान सादिया के साथ। प्रोग्राम के अगले हिस्से में समाप्त करें हफ्तावार ख्वातीन की ख्वाहिशें में थिएटर आर्टिस्ट बनना। सामिन, थिएटर आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश रखने वाली ख्वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो अदाकारी, हिदायतकारी, ड्रामा निगारी या प्रोडक्शन डिज़ाइन के जरिए स्टेज पर कहानियों को जिंदा करने के फन से वाकिफ हों। इसलिए उन्हें खाम तख्लीकी सलाहियतों, सख्त जिस्मानी मेहनत, आवाज़ की तरबियत और इंतहाई तआवुन पर मबनी और मुतालबा करने वाले लाइव कारकर्दगी के माहौल में तशरीफ़ ले जाने के लिए लचक की ज़रूरत होती है। इसके लिए एक थिएटर प्रोडक्शन, एक टीम की ज़रूरत हुआ करती है। इस शोबे में करियर बनाने के लिए अदाकारी, गुलोकारी के अलावा दीगर थिएटर के रमूज से आशनाई भी लाजमी है। किरदारों को मुजस्सम करना, वसीलाइनों को हिफ्ज करना और लाइव सामेन के साथ मशगूल होना वगैरह। हिदायतकार, ड्रामा निगार, कोरियोग्राफर, म्यूजिकल डायरेक्टर जो शो के विजन को तश्कील देते हैं, उनके मशवरों के तहत कदम उठाना पड़ता है। गर्चे रस्मी तालीम सख्ती से लाजमी नहीं, लेकिन मुनज्जम तरबियत ज़रूरी रहती है। थिएटर के फनकार आमतौर पर बड़े किरदार निभाकर कायम करदा इलाकाई रेपर्टरी कंपनियों में शामिल होकर या कौमी और बैनुल अक्वामी टूरिंग प्रोडक्शंस पर काम करके तरक्की करते हैं। बहुत से फनकार अपने करियर की तकमील इसके जरिए करते हैं। थिएटर आर्ट स्टेज पर परफॉर्म किए जाने वाले मुख्तलिफ फ़नून का मजमुआ है। इसमें अदाकारी, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, मौसीकी और स्टेज डिज़ाइन शामिल हैं। ये एक ऐसा ताकतवर ज़रिया है जिसके ज़रिए जज्बात का इजहार और माशरती मसाइल को उजागर किया जाता है। थिएटर में ख्वातीन का किरदार न सिर्फ फनकाराना सलाहियतों के इजहार तक महदूद है, बल्कि ये माशरे में सिन्फी मसावात और ख्वातीन के हकूक़ को उजागर करने का एक ताकतवर ज़रिया भी है। ख्वातीन ने बतौर अदाकारा, डायरेक्टर और लिखारी थिएटर की दुनिया में इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा की हैं, लेकिन जदीद दौर में ख्वातीन ने स्टेज पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। थिएटर ड्रामों के ज़रिए ख्वातीन के घरेलू मसाइल, तशद्दुद और समाजी तफरीक जैसे मौजूआत को जुरत के साथ पेश किया जाता है। ख्वातीन डायरेक्टर्स और फनकार अपने काम के जरिए दक्कनूसी रिवायत को तोड़ रही हैं। इन फनकारों को आज भी थिएटर की दुनिया में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। माशरती दबाव और दक्कनूसी सोच का मुकाबला करना, काम के मुनासिब मुआवजे और मसावी मौके का फुकदान अक्सर ख्वातीन को ड्रामों में सिर्फ तफरी या रिवायती किरदारों तक महदूद कर दिया जाता है। लेकिन इस शोबे के अपने मसाइल और चैलेंजेस हैं। ताहम करियर के तौर पर ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और कई ख्वातीन आज इस शोबे में मौजूद हैं और इन मसाइल से निपट कर अपने लिए एक आसान रास्ता भी बना रही हैं। ख्वातीन की ख्वाहिशें पंख चाहती हैं, इन्हें उड़ान दें। तो दोस्तों, ये था ख्वातीन की ख्वाहिशें और इसी के साथ समाप्त करें अगली पेशकश। कुमार सानू और चित्रा की आवाज़ों में फिल्म विरासत से इस नगमे को लिखा है गुलशन, माफ़ करें, आप समाप्त करें इस नगमे को।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्स पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अपनी मेजबान सादिया के साथ। और इसी के साथ वक्त हो गया है हफ्तावार सेगमेंट गरसास छेड़ा का, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे दोस्ताना के उनवान पर बॉलीवुड के मशहूर नगमे। समाप्त करें इस सिलसिले की पहली पेशकश मन्ना डे की आवाज में फिल्म जंजीर से। इस नगमे को लिखा है गुलशन बावरा ने, मौसीकी दी है कल्याण जी आनंद जी ने। आइए समाप्त करें।

सामीन, दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता है, एक ऐसा जज्बा जिसको लफ्ज़ों में बयान तो कर सकते हैं लेकिन उसकी अपनी एक अलग ही खुशी रहती है। इसीलिए शायर ने कहा है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। दोस्त तो वो होता है जिससे दिल मिलता है, हम उससे इतने करीब हो जाते हैं कि हम प्याला हम निवाला बन जाते हैं। ये हम प्याला हम निवाला हम मशरबी अब चड्डी बड्डी कहलाती है। दोस्तों की अपनी शरारतें अपनी शिकायतें हुआ करती हैं, इसी तरह इनकी मोहब्बतें भी हुआ करती हैं। समाप्त करें अगली पेशकश, अनजान का लिखा नगमा राजेश रोशन की मौसीकी के साथ, फिल्म याराना से किशोर कुमार की आवाज़ों में।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। आप सुन रहे हैं हफ्तावार नगमों का मौजूआती प्रोग्राम गरसास छेड़ा, अपनी मेजबान सादिया के साथ। समाप्त करें अगली पेशकश मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में फिल्म सुहाग से। इस शेर के साथ के दोस्ती आम है लेकिन ए दोस्त, दोस्त मिलता है बड़ी मुश्किल से।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। आप सुन रहे हैं हफ्तावार नगमों का मौजूदाती प्रोग्राम गरसास छेड़ा, अपनी मेज़बान सादिया के साथ। समाप्त करें अगली पेशकश, बल्कि आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ों में फिल्म शोले से। इस नगमे को लिखा है आनंद बख्शी ने और मौसीकी दी है RD बर्मन ने। समाप्त करें इस नगमे को, लेकिन उससे पहले सुनते जाएं एक छोटी सी नज्म शकील जमाली की। वो कहते हैं कि जिंदगी को गुजारने के लिए वक्त का जहर मारने के लिए, जिंदगी को गुजारने के लिए वक्त का जहर मारने के लिए, अपना गुस्सा उतारने के लिए फ़ोन पर शब गुजारने के लिए दोस्त सचमुच बहुत ज़रूरी हैं। दिल के छालों को फोड़ने के लिए, बर्फ उदासी को तोड़ने के लिए, रुख हवाओं का मोड़ने के लिए, दिल के टुकड़ों को जोड़ने के लिए दोस्त सचमुच बहुत ज़रूरी हैं। हमने माना कि दर्द देते हैं, राह में साथ छोड़ देते हैं, आस की डोर तोड़ देते हैं, तार दिल के झिझोड़ देते हैं, फिर भी मुझ जैसे आदमी के लिए कूचे जाम रोशनी के लिए, इब्ने आदम की बेहतरी के लिए दोस्त सचमुच बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, आप सुनते रहिए आज के आखिरी पेशकश। इजाज़त दें अपनी मेज़बान सादिया सदफ को। आपसे फिर मुलाकात होगी, सुबह खैर। थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे वेस्टर्न म्यूज़िक प्रोग्राम।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। दोपहर के 12:44 आपकी दोस्त सविता आप सभी का करती है स्वागत कार्यक्रम सुरभि में।

आइए दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा है से। चर्चा है में आज हम बात करेंगे, जी हाँ आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे दृष्टि दान की, और इसके साथ ही आज है सभ्यताओं के बीच संवाद हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो आइए पहले हम बात करते हैं सभ्यताओं के बीच संवाद हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। यह हर वर्ष 10 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों, धर्मों और समुदायों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना है, ताकि वैश्विक शांति, सहिष्णुता और आपसी समझ को बढ़ावा दिया जा सके। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी, ताकि दुनिया भर के लोगों को यह समझाया जा सके कि सांस्कृतिक विविधता मानव शक्ति की, समाज की शक्ति है, ना कि कमजोरी। जब विभिन्न सभ्यताएं आपस में संवाद करती हैं तो एक दूसरे से सीखती हैं, संघर्ष की बजाय सहयोग को प्राथमिकता देती हैं। आज के समय में जब दुनिया धार्मिक, सांस्कृतिक और नस्लीय मतभेदों से जूझ रही है, ऐसे में संवाद की एकमात्र माध्यम है जो गलतफहमियों को दूर कर सकता है। यह दिन हमें सिखाता है कि एकजुटता और संवाद के माध्यम से ही एक शांतिपूर्ण, समावेशी समाज की रचना संभव है। तो दोस्तों चर्चा है में हमने बात की सभ्यताओं के बीच संवाद हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, और आइए अब बात हम करते हैं वर्ल्ड आई डोनेशन डे की। विश्व नेत्रदान दिवस हर वर्ष 10 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य नेत्रदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और नेत्रदान को प्रोत्साहित करना है। भारत समेत दुनिया भर के लाखों लोग कार्निया की क्षति के कारण अंधत्व से ग्रस्त हैं। नेत्रदान से एक व्यक्ति की दोनों आँखें दो नेत्रहीनों को नई रोशनी दे सकती हैं। नेत्रदान मृत्यु के बाद किया जाता है और यह प्रक्रिया सरल, सुरक्षित है। किसी भी धर्म, जाति, आयु के व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। इस दिन कई नेत्र बैंक, अस्पताल और सामाजिक संगठन जागरूकता अभियान, नेत्रदान शपथ कार्यक्रम और रैली का आयोजन किया जाता है। विश्व नेत्रदान दिवस हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के बाद भी किसी की जिंदगी में उजाला ला सकते हैं। नेत्रदान एक महान सेवा है जिससे किसी की दुनिया रोशन होती है। तो दोस्तों नेत्रदान यानी दृष्टिदान की तरफ आगे बढ़ें और अपनी इन आँखों से किसी और को दुनिया दिखाएं।

जी हाँ दोस्तों, आपकी दोस्त सविता एक बार फिर से स्वागत करती है हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि में। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई अनेक पहलों में से आज की जिस पहल पर हम चर्चा करेंगे वो है पीएम श्री योजना। पीएम श्री स्कूल भारत सरकार की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का विकास करना है, जहां प्रत्येक छात्र को स्वागत और देखभाल का अनुभव हो, जहां एक सुरक्षित और प्रेरक शिक्षण वातावरण हो, जहां सीखने के लिए अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की जाए और जहां सभी छात्रों के लिए अच्छी भौतिक संरचना और सीखने के अनुकूल उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हों। यह विद्यार्थियों का एक प्रकार से पोषण करता है। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा परिकल्पित एक न्याय संगत, समावेशी और बहुल समाज के निर्माण के लिए सक्रिय, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक बन सके। इस योजना से 20 लाख से अधिक छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। यह योजना स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ावा देगी और नीति, व्यवहार और कार्यान्वयन में सहायक होगी। इन स्कूलों से प्राप्त ज्ञान को देश के अन्य स्कूलों तक भी पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री योजना आज भारत भर के सरकारी स्कूलों के भविष्य को आकार देने वाली सबसे प्रभावशाली पहलों में से एक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप समग्र शिक्षा पर केंद्रित यह योजना न केवल हजारों स्कूलों का उत्थान कर रही है बल्कि परिवर्तन के नए मानदंड भी स्थापित कर रही है। पीएम श्री की खासियत ये है कि इसे महज एक और सरकारी कार्यक्रम के रूप में तैयार नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य एक सामूहिक आंदोलन बनाना है जिसमें शिक्षकों, विद्यालय प्रमुखों, अभिभावकों, समुदायों और व्यापक शिक्षा व्यवस्था को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। ये सभी मिलकर विद्यालयों को उत्कृष्टता की प्रेरक आदर्शों में विकसित करने में योगदान दे रहे हैं। पीएम श्री योजना के पैमाने और महत्वाकांक्षा को सही मायने में समझने के लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा मंत्रालय के मजबूत ढांचे के मार्गदर्शन में राज्यों में इस योजना की संरचना और कार्यान्वयन कैसे किया जा रहा है। पीएम श्री योजना राज्यों में प्रगति कर रही है। शिक्षा मंत्रालय के 3 ढांचों के द्वारा इसे निर्देशित किया जा रहा है। ये ढांचे इस परिवर्तन की नींव है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक चयनित विद्यालय NEP 2020 की परिकल्पना के अनुरूप हो, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाएं और राष्ट्रव्यापी अनुकरण के लिए मानक स्थापित करें। प्रधानमंत्री श्री योजना का मूल उद्देश्य केवल धन और बुनियादी ढांचे तक सीमित न रहकर 21वीं सदी में सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति को नए सिरे से परिभाषित करता है। यह योजना स्कूलों को केवल रटने के स्थान के रूप में देखने के दृष्टिकोण से हटकर उनके समग्र, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बदलाव को दर्शाती है। यह स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पूर्ण कार्यान्वयन को सक्रिय रूप से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें अनुभवात्मक शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, डिजिटल नवाचार और सामुदायिक भागीदारी को एकीकृत किया गया है। दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय पीएम श्री योजना को आदर्श स्कूलों के रूप में स्थापित करके इस परिवर्तन को उजागर करता है, जो न केवल NEP 2020 का क्रियान्वयन करते हैं बल्कि पड़ोसी स्कूलों को भी इसी तरह की प्रथाओं को अपनाने में मार्गदर्शन करते हैं। इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए मंत्रालय ने 3 स्तंभों पर आधारित एक संरचित दृष्टिकोण तैयार किया। स्कूल परिवर्तन रूपरेखा कार्यक्रम, वित्तीय मानदंड और गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली। तो दोस्तों, आज हमने बात की पीएम श्री योजना की पहल कार्यक्रम के अंतर्गत। आप सुन रहे कार्यक्रम सुरभि, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता। और चलते चलते आपके लिए
मुकेश की आवाज में जिंदगी और तूफान का ये गीत सुनवाते सुनवाते अब आपकी दोस्त सविता आपसे लेगी विदा। मुलाकात होगी 12 तारीख को फिर से, तब तक के लिए खुश रहिए और आपका दिन शुभ हो, ऐसी ही दुआओं के साथ दीजिए इजाजत सविता को। यह संचेता चैनल, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरभि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना लोगों के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय

0: और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री

0: मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारत के गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
2: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
2: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। ये अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी के आप

0: पूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान सुनछेन संजयिता प्रचार तरंगे। एखन शास्त्रीय संगीतेर अनुष्ठाने शुनबेन मियाकी सारंग रागे बेहाला। परिवेशन करबेन आशीष कुमार दास। तबलाय संगत करछेन समीर नंदी। मियाकी सारंग रागे बेहाला।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হল সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে এবং নিউজ অন এআইআর অ্যাপে। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় বিকেল 4:59:48। এখন খবর দিল্লি থেকে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রশান্ত কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में जन कल्याण पर केंद्रित सरकार की नीतियों का उल्लेख और प्रमुख जनसंख्यिकी समूहों के सशक्तिकरण का विस्तृत विवरण दिया गया है।
2: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है। वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती

में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इनमें केंद्र सरकार के जनरल पूल कार्यालय आवास और जनरल पूल आवासीय आवास का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। एनडीए की बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ते आंतरिक संघर्ष के बीच पार्टी के अब तक दो सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध किया। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। ये प्रणाली उपग्रह सिग्नल अधिग्रहण और ट्रैकिंग को बाधित करके और सिग्नल स्पूफिंग तथा भ्रामक जैमिंग करके दुश्मन के GNSS रिसीवर के प्रदर्शन को कम करने में सक्षम है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम के वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG और PNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी। जी हाँ, और हर बुधवार को आप ये विशेष कार्यक्रम सुनते हैं महिलाओं पर आधारित। और आज ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है आपके साथ पॉपी। तो पॉपी रहेगी आपके साथ 5:55 तक। और आज किसी एक विशेष व्यक्तित्व के बारे में हम बात करेंगे। वो किसके बारे में बात करेंगे हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती के वंदना से, माँ शारदा की वंदना से।

1977 में बनी फिल्म आलाप से आपने सुना ये वंदना, जिसे गाया था लता मंगेशकर और दिलराज कौर ने। वैसे माँ शारदा देवी, जी हाँ, नाम सुनने से ही जिन्हें हम जानते हैं विद्या, ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री देवी के नाम से। इनका नाम शारदा शरद ऋतु से जुड़ा हुआ है, जो निर्मलता और शांति का प्रतीक माना जाता है। माँ शारदा श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और हंस पर विराजमान रहती हैं। इनके हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे हाथ में ये वर मुद्रा में आशीर्वाद देती हुई नजर आती हैं। वीणा संगीत और कला, पुस्तक ज्ञान, माला आध्यात्मिक और वर मुद्रा सफलता का प्रतीक है। विद्यार्थी, कलाकार या फिर लेखक, जो भी हो, वो हर कोई इस विशेष माँ की पूजा अवश्य करता है। खास करके वसंत पंचमी का दिन माँ शारदा को समर्पित है और उस दिन पीले वस्त्र पहनकर, पीले फूल चढ़ाकर या कुनदेंदु तुषार हार ध्वला मंत्र से इनकी हम आराधना करते हैं। आज ऐसे ही एक व्यक्तित्व, बिल्कुल इसी ऐसे ही गुणों से, ऐसे ही ज्ञान के साथ जुड़ी हुई एक शख्सियत हैं हमारे समाज में, थी, और आज उन्हीं को हम याद कर रहे हैं। भले ही वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो विचार हैं, वो आज भी जीवित हैं हमारे बीच। हम ज़रूर बात करेंगे वो कौन है, किस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं। उर्वशी एक ऐसा

कार्यक्रम है, एक ऐसा माध्यम है जहां हम हमेशा ऐसी स्त्रियों के बारे में, ऐसी वीरांगनाओं के बारे में बात करते हैं जिन्होंने समाज को एक विचारधारा के साथ जोड़ा और समाज में उनकी जो सैक्रिफाइस है हम कह सकते हैं, या उन्होंने जो कुछ किया, जो उनका योगदान था वो उल्लेखनीय है और बोलने के काबिल है, बताने के लायक है। तो आज ऐसे ही एक शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे। सुनते रहिए, साथ रहिए। नारी कोमल है पर कमज़ोर नहीं।

आशा भोसले की आवाज में बेहद खूबसूरत गीत और जोश से भरा ये गीत आपने सुना फिल्म का नाम आखिर क्यों से। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने हमेशा एक सफेद और लाल पार की साड़ी से लिपटते हुए पूरी जिंदगी बिताई और उनका जो जीवन था वो केवल और केवल दूसरों को, जी हाँ हर किसी को, दूसरों को तो नहीं कह सकते, समाज के हर किसी को अपने संतान के रूप में उन्होंने देखा। जी हाँ हम बात कर रहे हैं माँ शारदा देवी की, श्री रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी माँ शारदा देवी, जिन्हें हम श्री माँ या होली मदर के नाम से भी जानते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक सहधर्मिणी थी। उनका जन्म 22 दिसंबर सन 1853 को पश्चिम बंगाल के जयराम बाटी गांव में हुआ था। बचपन से ही शारदा देवी अत्यंत सरल, दयालु और सेवा भाव से भरी थी और उन दिनों केवल 5 वर्ष की उम्र में उनका विवाह दक्षिणेश्वर के संत श्री रामकृष्ण से हुआ था और विवाह के बाद भी वे लंबे समय तक अपने मायके में रहीं और 18 वर्ष की उम्र में दक्षिणेश्वर आईं। उनके बारे में हम आपको और भी बताएंगे लेकिन आइए एक खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत अवश्य शायद सही मौका नहीं है बजाने का क्योंकि भोर भय पंछी गीत के बोल हैं, शाम होने जा रहा है, पंछी वापस जा रहे हैं अपने अपने निवास स्थान पर, लेकिन मुझे लगा कि ये गीत की सूक्ष्मता इतनी अधिक है कि इस गीत को आप किसी भी वक्त बजा सकते हैं या सुन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने ये खूबसूरत गीत सुना फिल्म आंचल से, और इस गीत की रचना करी थी आर डी बर्मन ने, संगीत की रचना करी थी आर डी बर्मन ने, और इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। वैसे दोस्तों आजकल अगर हम देखें तो रिश्तों की डोर बेहद कमजोर होती जा रही है। ऐसे में श्री रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा का दाम्पत्य जीवन लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है। उम्र में 19 साल का फासला, जी हाँ दोस्तों, उम्र में दोनों के बीच 19 साल का अंतर होने के बावजूद दोनों ने आदर्श जीवन व्यतीत किया। दोनों ही जितने सांसारिक थे उतने ही आध्यात्मिक थे। माँ शारदा के साथ रहकर रामकृष्ण परमहंस एक आदर्श गृहस्थ तो थे ही, साथ में एक आदर्श सन्यासी। कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी शारदा देवी को माँ और देवी का स्वरूप मानते थे। रामकृष्ण उन्हें साक्षात माँ काली का अवतार मानते थे। विवाह के बाद भी उन्होंने दाम्पत्य जीवन नहीं अपनाया। दक्षिणेश्वर में उन्होंने शारदा देवी की सदाशी पूजा की थी। उन्हें देवी के आसन पर बिठाकर पूजा किया और कहा, आज से तुम ही मेरी शक्ति हो। उन्होंने रिश्ता शारीरिक नहीं आध्यात्मिक रखा अपनी धर्म पत्नी के साथ। शारदा देवी को अपनी साधना की सहायिका और उत्तराधिकारी माना। उन्हें संघ जननी बनने के लिए तैयार किया ताकि उनके बाद भक्तों का मार्गदर्शन कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ बातें हैं, हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम म्यूजिकल है, गीतों के साथ जुड़ा है, तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

स्टूडियो की घड़ी में 7:46 और 5 सेकंड और आपको बताऊं कि आज उर्वशी कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं माँ शारदा देवी के बारे में। जी हाँ, माँ शारदा देवी जो कि आध्यात्मिक रूप से श्री परमहंस की धर्मपत्नी थी, लेकिन उन्हें हमेशा माँ के रूप में देखा गया और उनसे ये कहा गया कि वो सबकी माँ हैं। एक वक्त एक समय पर उन्हें संतान सुख प्राप्त करने की इच्छा जाहिर हुई तो उन्होंने श्री परमहंस से पूछा कि क्या मैं माँ बन सकती हूँ, तो उन्हें एक बड़ी ही सरल तरीके से समझाया और बताया कि तुम तो जगत जननी हो, तुम एक संतान के बारे में क्या कह रही हो, क्यों पूछ रही हो, ये पूरा संसार तुम्हारा संतान है और इनकी देखरेख करना, इनको समझना, इनके भीतर अच्छे विचारों को बताना, इन्हें सिखाना, यही तो तुम्हारा कार्य है। और शायद इसलिए वो कहते हैं, रामकृष्ण कहते हैं कि जब मैं शारदा को देखता हूं तो मुझे उसमें माँ के दर्शन होते हैं, इसलिए उनका संबंध बिल्कुल स्वच्छ, साफ, शुद्ध

स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:51:22 और आज हम बात कर रहे हैं उर्वशी कार्यक्रम में माँ शारदा के ऊपर। ज्येष्ठ की अमावस्या थी, श्री रामकृष्ण ने शारदा देवी को देवी के आसन पर बिठाया, उनके चरण गंगा जल से धोए, फूल चंदन अर्पित किया और मंत्र से पूजा की। पूजा के अंत में अपनी साधना का सारा फल, माला, जाप, सब कुछ उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इसके बाद वे समाधि में चले गए। इस घटना से रामकृष्ण ने दिखाया कि स्त्री भी साक्षात ईश्वरी है। एक बार माँ शारदा से किसी ने पूछा, आप रामकृष्ण को कैसे देखती हैं? उन्होंने कहा, मैं उन्हें अपना संतान भी मानती हूँ, गुरु भी और इष्ट भी। दोनों का रिश्ता इतना दिव्य था, इतने लौकिक परिभाषाएं जहां छोटी पड़ जाती हैं। माँ शारदा ने भी आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन किया। रामकृष्ण कहते हैं कि उनका विवाह संसार को एक नया आदर्श देने के लिए हुआ है, ये दिखाने के लिए नहीं कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ शारीरिक है, बल्कि आत्मा से भी जुड़ सकता है। श्री रामकृष्ण के देह त्याग के 34 साल बाद तक शारदा माँ ने ही भक्तों को संभाला। स्वामी विवेकानंद और बाकी शिष्य उनसे ही मार्गदर्शन लेते थे। विवेकानंद उन्हें जीवंत दुर्गा कहते थे। इस तरह रामकृष्ण ने अपनी पत्नी को अपने मिशन की आध्यात्मिक शक्ति बना दिया। तो आज ये थी उनके ऊपर एक छोटी सी कार्यक्रम की प्रस्तुति। उम्मीद है आप

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष

0: प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक दो सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। A meeting of the National Democratic Alliance, NDA, is underway in the national capital. The meeting is being held to celebrate NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. All constituents of the alliance, besides the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are attending the meeting. The NDA meeting is also being attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. The Union Cabinet today passed a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the resolution discusses this historic milestone of the Prime Minister's continuous service to the nation as an elected Prime Minister and outlines several commitments and resolutions.
2: Prime Minister considers the youth of India as the country's greatest asset. Therefore, he has introduced several programs with strong emphasis on skill development, Startup India, innovation, digital economy, sports, entrepreneurship and fitness. As a result, India has emerged as a major sporting nation, one of the world's three largest startup ecosystems and has demonstrated remarkable scientific capabilities through missions such as Chandrayaan.
1: Mr. Vaishnav said the cabinet today approved extension of Ahmedabad Metro Phase 2A with an outlay of 2,169 crore rupees. He said it comprises a 6-kilometer long metro corridor with 5 stations. The minister said upon operationalization of Phase 2A, the Ahmedabad Gandhinagar will have over 77 kilometers of active metro rail network. He said the cabinet also approved central government office complex and central government residential complex in Amravati in Andhra Pradesh. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi.

आकाशवाणी कोलकाता में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वार्ता। और दोस्तों, आज वार्ता में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस की। आज पूरा देश मना रहा है नेशनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस डे। हर साल 10 जून को आज का दिन मनाया जाता है। ये दिन हमारी रसोई के उन छोटे हीरो को समर्पित हैं जो खाने का न केवल स्वाद बल्कि खुशबू और सेहत तीनों बढ़ाते हैं। इस दिन की शुरुआत अमेरिका में हुई थी, लेकिन अब दुनिया भर के खाने के शौकीन इस दिन को मनाते हैं। मकसद है लोगों को रोजमर्रा की जड़ी बूटियां और मसालों के फायदे याद दिलाना। काली मिर्च से लेकर हल्दी तक हर मसाले की अपनी एक कहानी है, अपना एक रंग है और अपना एक खुद का औषधीय गुण है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि भारत को मसालों की भूमि कहा जाता है। केरल की इलायची हो या कश्मीर का केसर, गुजरात का जीरा हो या आंध्र की मिर्ची, दुनिया भर में मशहूर है। हमारे दादी और नानी के नुस्खों में भी अदरक, तुलसी, अजवाइन, मेथी जैसी जड़ी बूटियां हर छोटी मोटी बीमारी का इलाज रही हैं। वैसे आज का दिन कैसे मनाया जाता है आपको बताना चाहेंगे कि रोज के खाने में कोई एक नया मसाला डालें, जैसे पास्ता में ऑरिगैनो की जगह कसूरी मेथी, धनिया, पुदीना, तुलसी जैसे हर्ब्स गमले में उगाएं। ताज़े हर्ब्स का स्वाद ही अलग होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। और आज के दिन जब हम इतने मशरूफ हुए हैं और अपने मशरूफियत से परेशान हैं, तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए बाज़ार जाना तो संभव नहीं। ऐसे में अगर आप उन्हीं चीज़ों को अपने घर के बालकनी में या बरामदे में गमलों में अगर उगाते हैं तो दोहरी खुशी मिलती है। एक तो उसे बनाने की यानी कि उगाने की खुशी, और दूसरा उस जायके को अपने सेहत के साथ जोड़ना, अपने खाने के साथ जोड़ना। आज के दिन लोग पुराने मसाले के डिब्बों को बिल्कुल साफ कर देते हैं। जी हाँ, 6 महीने से ज़्यादा पुराने पिसे मसाले अपना जो असर है वो खो देता है। तो ऐसे में 6 महीने से ज़्यादा किसी भी मसाले को इस्तेमाल नहीं करने में ही भलाई है। साबुत मसाला भुनकर खुद पीसे, पैकेट वाले मसाले इनसे परहेज करें, इनसे अपने आप को दूर रखें। और बड़ी आसान सी बात है, वो जो मसाला है, जो खड़ा मसाला है, उसे डालकर खाना बनाएं। और अगर वाकई आपको पाउडर चाहिए, मसाले के रूप में चाहिए, पिसा हुआ टेक्सचर चाहिए, तो उसे ज़रा अपने किसी बर्तन में आप लेकर उसे थोड़ा सा गर्म कर लें। गर्म होने के बाद उसे ठंडा होने दें ताकि उसमें कड़कपन आ जाए और उसका जो मॉइस्चर है, उसमें जो नमी है वो चली जाए। और उस नमी के जाने के बाद आप उसे मिक्सी में या सिलबट्टे में, हालांकि मुझे मालूम है सिलबट्टा आजकल कोई यूज़ करना नहीं चाहता है, तो ऐसे में मिक्सी बहुत ही सहायक होती है, उसे खुद ही पीस लें। और फिर देखिए, जो बाज़ार का जो मसाला है और आपके घर का खुद का बना मसाला, उसमें क्या फ़र्क है। वैसे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, चूँकि आज मसाला दिवस है, जड़ी बूटी और मसाला दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, तो खाना, दिन का खाना चाहे कहीं भी आपने खाया हो, लेकिन रात का खाना सब परिवार एक साथ मिलकर मसालेदार बनाकर खाइए और ज़िंदगी में भी मसाला लाइए। जी हाँ, जायका ही बदल जाएगा। वैसे लोगों में एक और सोच है कि ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। देखिए, मसाले में कई चीज़ें होती हैं, हल्दी है, जीरा है, दालचीनी है, अदरक है, काली मिर्च है, मेथी है, लेकिन ये सारी की चीज़ें सब बहुत सेहतमंद है। अगर किसी चीज़ को अगर दूर रखना है तो उससे मिर्च से अपने आप को दूर रखिए। हालांकि छौंक वगैरह में मिर्च जो जायका देता है, जो फ्लेवर देता है, वो किसी चीज़ में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि सूखे मिर्च को, मिर्ची पाउडर को दूर रखें, वरना मसाला हमेशा जानिएगा बिल्कुल ही बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। खानों में मसाले का मिलना बहुत अच्छी बात है। हल्दी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है,
दूध में या सब्जी में इसे डालकर रोज खाएं। इससे क्या होगा कि शरीर के भीतर जो सूजन है, कहीं कई कई जगहों में सूजन पाया जाता है, वो सूजन में कमी आएगी। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जीरा पाचन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जीरा और अजवाइन तड़के का किंग इसे बताया जाता है। कोई भी खाना, किसी भी चीज़ में, दाल हो, सब्जी हो, जिसमें तड़का आप देना चाहते हैं, छोंक देना चाहते हैं, उसमें जीरा अवश्य डालें, अजवाइन अवश्य डालें। इससे आपका जो हाजमा है वो बेहतर होगा। दालचीनी यानी कि सिनेमम ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। चाय कॉफ़ी में चुटकी भर डाल दें, फिर देखिए क्या फ़र्क आएगी आपके सेहत पर। अदरक सर्दी खांसी का दुश्मन है, और चाय से लेकर सब्जी तक हर चीज़ में इसे आप डालिए। और इससे क्या होगा, कच्चे अदरक का भी सेवन कर सकते हैं। इससे आपके भीतर का जो श्लेष है, जो ठंडापन है, वो दूर रहता है, सर्दी खांसी दूर रहती है, गले की एलर्जी है वो दूर रहती है। अक्सर आपने सुना होगा रात को सोते समय अगर खांसी होती है तो हमारी नानी दादी ने हमेशा कहा कि अदरक कूट के उसे मुंह में डाल दो, उसका जो रस है वो धीरे धीरे गले में जाता है, तो उससे एलर्जी जो है वो गले की एलर्जी दूर होती है। और ये जो आज मैं आपको बातें बता रही हूँ, ये कोई नई बात नहीं है, ये हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। मसाले सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाते बल्कि संस्कृति यादें और सेहत भी है। आज अपने खाने में थोड़ा एक्स्ट्रा तड़का लगाइए और इन नन्हे जादूगरों का बस करामात देखिए। आपको बताना चाहेंगे कि इस दिन की शुरुआत अमेरिका में हुई थी, मैंने पहले ही बताया था, और धीरे धीरे ये बहुत ही पॉपुलर हो गया, बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। मकसद साफ था कि लोगों को याद दिलाना कि नमक मिर्च के अलावा भी किचन में 40 से 50 तरह के फ्लेवर छुपे हुए हैं इन छोटे छोटे हीरों में। साथ ही पुराने हो चुके मसाले को बदलने का दिन है आज का दिन। हर्ब्स के बारे में अगर बात करें तो पौधे की जो हरी पत्तियां हैं, जैसे धनिया, पुदीना, तुलसी, रोजमेरी, थाइम, ओरिगैनो, इन्हें अक्सर ताज़ा या सुखाकर इस्तेमाल करते हैं। इससे सब्जी में या आपका जो भी डिश आप बना रहे हैं उसमें एक अलग ही

0: स्वाद आ जाता है, एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है। और स्पाइस क्या है? स्पाइस उसी पौधे का बाकी हिस्सा है। बीज जैसे जीरा, छाल जैसे दालचीनी, जड़ जैसे अदरक, कलियां जैसे लौंग, केसर जैसे फूल, इनका स्वाद तेज होता है और ये ज़्यादातर सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। हम सब जानते हैं कि 3000 साल पहले से भारत इन मसालों का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा। काली मिर्च के लिए तो कोलंबस भारत ढूंढते ढूंढते अमेरिका पहुंच गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और एक्सपोर्टर है, जी हाँ, निर्यातक है। दुनिया के कुल उत्पादन का 75% एक्सपोर्ट भारत से होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर भौगोलिक रचना को देखें तो हर राज्य में अपना एक खास मसाला। कश्मीर का केसर, गुंटूर का मिर्च, मेघालय का लाकाडोंग हल्दी, केरल की इलायची, राजस्थान की मेथी वगैरह वगैरह। मसाला सिर्फ स्वाद नहीं, दवा भी है। आयुर्वेद में इन्हें औषधि माना गया है। तो आज आपने सुना वार्ता में नेशनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस डे। थोड़ी देर में आप रुक करेंगे दिल्ली की ओर, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। सुनते रहिए, साथ रहिए। फिलहाल हमारी मुलाकात होगी 6:30 पर, लेकर कार्यक्रम गुलगुलशन।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः। वस्त्राणां कृते PLI योजनायाः तृतीय प्रक्रमस्यान्तर्गतं 96 समवाय विशेषाः सर्वकारेण अनुमोदिताः। प्रायः 13,000 कोटि रूप्यकाणां निवेशः प्रतिबद्धः। रक्षामन्त्रालयेन नौसेनायाः कृते 20 उन्नत जैमर इत्येतेषां क्रयणार्थं प्रायः 500 कोटि रूप्यकाणां अनुबन्धः स्वीकृतः। अफगानिस्तान देशे पाकिस्तानस्य वायु आक्रमणेन 11 बालकैः सह न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः। अपि च ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य PV सिंधु, तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य लोकतांत्रिक रूपेण निरंतरतया सेवायमानः दीर्घतमः प्रधानमंत्री अवदत्। श्री मोदी 14-2000 वर्षे मई मासस्य 26 दिनांके शपथ ग्रहणं कृतवान् आसीत्। सः पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्यस्य कीर्तिमतम् अतिक्रमितवान्, यो हि प्रथमवारं 25-29 वर्षे मई मासस्य 13 दिनांके निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपेण शपथं स्वीकृत्य 64-29 वर्षे मई मासस्य 27 दिनांक पर्यन्तं कार्यम् अकरोत्। पंडित नेहरू वर्यस्य निर्वाचित प्रधानमंत्रित्वेन कार्यकालः 98-300-4000 दिनानि यावत् आसीत्। इदानीं प्रधानमन्त्रिणः मोदीवर्यस्य अविरत कार्यकालः 99-300-4000 दिनानि यावत् अस्ति, येन सः भारतस्य इतिहासे दीर्घतमं कालं यावत् कार्यं कुर्वन् निर्वाचितः प्रधानमन्त्री अस्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्रिणं तस्य सेवायै अभिनन्दितवती। सामाजिकान्तर्जालीये पटले राष्ट्रपतिः अवदत् यत् अयम् ऐतिहासिकः अवसरः देशस्य जनैः द्वारा तस्य नेतृत्वे स्थापितस्य चिरस्थायि विश्वासस्य च प्रमाणरूपेण वर्तते। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन, कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इत्यादय केन्द्रीय मंत्रिण स्वतंत्र भारत से दीर्घ

0: उत्तम निरन्तर निर्वाचित प्रधानमन्त्री भवितुं श्रीमोदिनं शुभाशयाः प्रेषितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीय पटलीय सन्देशे डॉ. जयशंकरः अवदत् यत् एषा उपलब्धिः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे दूरदृष्टौ राष्ट्रिय विकासं प्रति प्रतिबद्धतायां च भारतस्य जनानां चिरस्थायि विश्वासं च प्रतिबिम्बयति। केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रिणा हरदीप सिंह पुरीवर्येण पर्यावरण वन ऋतुदशा परिवर्तन मन्त्रिणा भूपेन्द्र यादवेन ऊर्जा मन्त्रिणा मनोहर लालेन रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्रिणा जितेन्द्र सिंहेन संस्कृति पर्यटन मन्त्रिणा गजेन्द्र सिंह शेखावतेन विधि न्याय मन्त्रिणा अर्जुन राम मेघवालेन चापि श्रीमोदिनम् अभिनन्दितम्। अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य सभायां मन्त्रिमण्डलस्य सदस्याः अपि प्रधानमन्त्रिणं मोदीवर्यं सभायाम् उत्थाय अभिवादनं कृतवन्तः। विश्वस्य नेतारः अपि श्रीमोदिनं प्रति शुभकामनाः प्रेषितवन्तः। श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपतिः अनुरा कुमार दिसानायके पापुआ न्यूगिनी देशस्य प्रधानमन्त्री जेम्स मारापे त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य प्रधानमन्त्री कमला प्रसाद विसेसरादयः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः परिवर्तनशील शासनं वैश्विक दक्षिणस्य कृते तस्य समर्थनं समावेशी आर्थिक गतिशील भारतस्य विषये तस्य दूरदृष्टिं च प्रशंसितवन्तः। वस्त्राणां कृते उत्पादन सम्बद्ध प्रेरणा PLI इति योजनायाः तृतीय प्रक्रमस्य अन्तर्गतं 22 नूतनानि आवेदनपत्राणि सर्वकारेण अनुमोदितानि। वस्त्र मन्त्रालयः अवदत् यत् योजनायाः तृतीय चक्रस्यान्तर्गतम् आहत्य 96 समवाय विशेषाः चिताः सन्ति, येषु 20+7,12,000 कोटि रूप्यकाणां प्रतिबद्ध निवेशः 58,000 कोटि रूप्यकाणां प्रत्याशित व्यापारः च अस्ति। रक्षामन्त्रालयेन अद्य भारतीय नौसेनायाः कृते 20 एनहान्स्ड केपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर इत्येतेषां क्रयणार्थं 49,400 कोटि रूप्यकाणां अनुबन्धे हस्ताक्षरं विहितम्, यस्मिन् न्यूनातिन्यूनं 75% यावत् स्वदेशी वस्तूनि भविष्यन्ति। क्रयणस्य प्रवर्गस्य अन्तर्गतम् अनुबन्धः नवदिल्ल्यां रक्षासचिवस्य राजेश कुमार सिंहस्य उपस्थितौ हस्ताक्षरितः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमन्त्रिणं प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः। मन्त्रिमण्डलीय सभायाः अनन्तरं नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन उक्तं यत् प्रस्तावेऽस्मिन् निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन राष्ट्राय प्रधानमन्त्रिवर्यस्य निरन्तर सेवायाः ऐतिहासिकं सोपानं चर्चितः अस्ति, तथा च अनेकान् प्रतिबद्धतान् संकल्पाञ्च निरूपयति।
1: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान।
0: श्री वैष्णवः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भयोत्पादनस्य विरुद्धं कठोर कार्याचरणमपि स्वीकृतम्।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद के विरोध में कठोर कदम उठाए, सीमा पार आतंकवाद के कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया जो पहले अकल्पनीय थे और पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु जल समझौते को भी निलंबित स्थिति में रखा गया।
0: श्री वैष्णवः अवदत् यत् अद्य मन्त्रिमण्डलेन अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A इत्यस्य विस्ताराय 179,100,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययः स्वीकृतः। सः अवदत् यत् अस्मिन् 6 किलोमीटर सुदीर्घः मेट्रो मार्गः 5 स्थानकैः युक्तः अस्ति। मन्त्री अवदत् यत् द्वितीय क चरणस्य कार्यान्वयनेन अहमदाबाद गांधीनगरयोः मध्ये 70 किलोमीटर मितं यावत् सक्रियं मेट्रो रेल जालं भविष्यति।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए, एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप

0: हो रहा है उसके दो फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ईंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी वर्य अद्य अवदत् यत् देशे संकुचित प्राकृतिक ईंधनस्य CNG इत्यस्य अभावः नास्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः गृहेषु पाइप्ड नेचुरल गैस PNG इत्यस्य आपूर्तिं विस्तारयितुं तथा च LPG संपर्कान् PNG संपर्करूपेण परिवर्तयितुं प्रयत्नाः प्रचलन्ति।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
1: अफगानिस्तान देशस्य कुनार खोस्त पट्टिका इत्येतेषु प्रान्तेषु पाकिस्तानी सैन्य वायु आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः, तेषु 11 बालकाः आसन्। एकस्मिन् वक्तव्ये तालिबान पक्षस्य प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद इत्यनेन आक्रमणस्य निन्दां कृत्वा नागरिक गृहाणि लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं ह्यः रात्रौ अभवत् इति उक्तम्। सः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य सेना पुनः एकदा अफगानिस्तान देशस्य वायुक्षेत्रस्य उल्लङ्घनं कृतम्, अपि च तत् मानवीय अपराधम् उक्तम्। पाकिस्तान अफगानिस्तान देशयोः मध्ये गत कतिपयेषु मासेषु वर्धमान द्वन्द्वस्य मध्ये एषा नवीनतमा घटना अभवत्, यत्र पुनः पुनः गुलिका प्रहारे नागरिकानां मृत्योः चिन्ता वर्धमाना अस्ति। अन्त्यक्रीडावार्तायां ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य PV सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।

सुनने वाले सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम का नाम आप सभी जानते हैं, जी हाँ, हर रोज ये कार्यक्रम आपके लिए सजता है सवरता है, जिसका नाम है गुलगुलशन। और मैं हूँ पॉपी आपके साथ आज के इस विशेष गुलगुलशन को लिए हुए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे खूबसूरत गीत से जो न केवल माहौल के मुताबिक है बल्कि फिजाओं में बिल्कुल घुला हुआ है। जी हाँ, आज कोलकाता का मौसम बिल्कुल मानसून आ चुका है और ऐसे में मानसून से जुड़ा एक गीत आपको सुनाना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले मैंने देखा, मैं जब आ रही थी तो वर्षा बिल्कुल अपने पूरे, वो कहते हैं ना, खुशबू और अपने महक और अपने अस्तित्व को लिए हुए है। तो आइए वर्षा के ऊपर एक गीत सुनाते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म गुरु से।

0: गुलजार का लिखा गीत, एआर रहमान का संगीत और आवाज, श्रेया घोषाल की एक बेहद खूबसूरत गीत आपने सुना वर्षा के ऊपर, मॉनसून के ऊपर। वैसे आपको बता दूं कि हमारा ये कार्यक्रम जो आप 6:30 से 7 बजे सुनते हैं, ये इस कार्यक्रम का नाम है गुल गुलशन। वजह ये है कि इस गुलशन में बहुत सारे गुल हैं, बहुत तरीके के गुल हैं संगीत से जुड़े हुए। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम आपको गीत के हर शैली को सुनाते हैं, फिर वो चाहे भजन हो, चाहे कव्वाली हो या फिर गजल हो। तो ऐसे प्रस्तुत करते हैं हम हमारा ये गीतों भरा गुलशन। तो सुनते रहिए, साथ रहिए। अगली आवाज़ जो है वो अनूप जलोटा की है, एक खूबसूरत भजन के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम गुल गुलशन।
1: ऐसी लागी लगन नीरा हो गई मगन, इस भजन ने मुझे विशेष प्रसिद्धि दी। लोग मुझे इस भजन से पहचानते हैं। कई बार मैं देखता हूं, मैं कहीं बाहर घूमने गया हूं।

कोई मेरे सामने से गुजरता है और मुस्कुराते हुए इस भजन की एक लाइन गाता गाता गुजर जाता है, ये बताना चाहता है कि हमने आपको पहचान लिया। तो इस भजन से लोगों ने मुझे पहचाना, मुझे बहुत प्यार दिया और मैं इस भजन को अब तक करीब 4000 बार गा चुका हूं। फिर भी जब जब गाता हूं मुझे नया लगता है, क्योंकि मैं इसमें नए नए वेरिएशंस हमेशा करता हूं और आज भी कुछ ऐसी ही कोशिश करता हूं।

मुझे मालूम है सिर्फ मीरा ही नहीं बल्कि आप सभी जो इस गीत को सुन रहे हैं, जो इस भजन का आनंद ले रहे हैं, वो झूम रहे होंगे, बिल्कुल मदहोश हो गए होंगे आध्यात्मिकता के इस सागर में। जी हाँ, इस भजन में कुछ बात ही ऐसी है कि इंसान अपने आप को रोक नहीं सकता और जैसे मानो ईश्वर के साथ तार कहीं ना कहीं जुड़े जाते हैं, तो एक अजीब सा समागम होता है। और ऐसे ही समागम के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी के आवाज में एक कवाली, जिसे हमने लिया है अमर अकबर एंथनी से।

मेहदी हसन की आवाज में एक अजीब सी जादू है और इस जादू को बरकरार रखते हैं। एक और गजल सुनते हैं उन्हीं की आवाज में और इस गजल के साथ आपसे रुख्सत लेते हैं, लेकिन हाँ, आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी 7:30 पर लेकर कार्यक्रम दर्पण। तब तक के लिए नमस्कार और ये गीत आप सभी को नजराने के तौर पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों के निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल है। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी के राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इसी बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक गलियारे शामिल हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक के 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के

0: अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। ICC ने डॉक्टर सिंह को बताया कि वह अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को सुगम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में आशावाद और सकारात्मक ऊर्जा का नया दौर चल रहा है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। The National Democratic Alliance, NDA, today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. The meeting is being held to celebrate NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. The Union Cabinet today passed resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the resolution discusses this historic milestone of the Prime Minister's continuous service to the nation as an elected Prime Minister and outlines several commitments and resolutions.
2: प्रधानमंत्री जी, युवा शक्ति को भारत
3: प्राइम मिनिस्टर कंसीडर्स द यूथ ऑफ इंडिया एज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट एसेट देयरफॉर ही हैज इंट्रोड्यूस्ड सेवरल प्रोग्राम्स विद स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन डिजिटल इकोनॉमी स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड फिटनेस एज अ रिजल्ट इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर स्पोर्टिंग नेशन वन ऑफ द वर्ल्ड्स थ्री लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स एंड हैज डेमोंस्ट्रेटेड रिमार्केबल साइंटिफिक कैपेबिलिटीज थ्रू मिशंस सच एज चंद्रयान
2: क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
1: Mr. Vaishnaw said the cabinet today approved extension of Ahmedabad Metro Phase 2A with an outlay of 2,169 crore rupees. He said it comprises a 6-kilometer long metro corridor with 5 stations. He said the cabinet also approved central government office complex and central government residential complex in Amravati in Andhra Pradesh. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. The government has approved extension and validity of the credit guarantee scheme for microfinance institutions 2.0 up to the 31st of August this year or till guarantees for an amount of 20,000 crore rupees are issued. The Ministry of Finance said that as on date, loans totaling to 770 crore rupees have been sanctioned under the scheme. The scheme aims to provide credit guarantee support through National Credit Guarantee Trustee Company Limited to strengthen lending of microfinance institutions and facilitate increased credit flow of up to 20,000 crore rupees to non-banking financial company microfinance institutions. The government has approved 22 new applicants under the third round of the Production Linked Incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding

आकाशवाणी की डिजिटल क्लॉक कह रही है कि 7:30 हुए हैं और यही वक्त होता है जब आप सुनते हैं दैनिक पत्रिका कार्यक्रम दर्पण। मैं हूं आज पॉपी आपके साथ और आज दर्पण के अंतर्गत आप सभी जानते हैं एक नज़र होता है और आज चूंकि बुधवार है तो राही मतवाले भी आज दर्पण का हिस्सा है। तो आज एक नज़र में आपको बताएंगे वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे यानी कि विश्व प्रत्यापन दिवस। पूरे विश्व में आज के दिन को विश्व प्रत्यापन दिवस कहा जाता है और माफ कीजिए 9 जून को मनाया जाता है और आज इस कार्यक्रम को हम पेश कर रहे हैं विश्व प्रत्यापन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। क्या है इसका सही मतलब? प्रत्यापन यानी कि एक्रेडिटेशन, इसका मतलब है किसी संस्था, लैब, हॉस्पिटल या सर्टिफिकेशन बॉडी की जांच करके ये प्रमाणित करना कि वो तय मानकों पर खरा उतरती है। जैसे ISI मार्क, NABL से मान्यता प्राप्त लैब, NABH हॉस्पिटल वगैरह और भी बहुत ऐसी संस्था है जो मानकों पर खरा उतरने का सर्टिफिकेट देते हैं। इस दिन को ILAC यानी कि इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कोऑपरेशन और IAF यानी इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम मिलकर मनाते हैं। मकसद है बिजनेस, सरकार और आम लोगों को बताना कि प्रत्यापन से व्यापार, सेहत, सुरक्षा और पर्यावरण में भरोसा कैसे बनता है। भारत में कौन कराता है ये अब आपको समझना पड़ेगा। वर्ल्ड प्रत्यापन वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे जो हम मना रहे हैं, भारत में ये एक्रेडिटेशन कौन करता है इसमें आपको बताना चाहेंगे कि भारत में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि QCI के तहत 3 मुख्य बोर्ड हैं। एक है NABL जिसके बारे में हमने बताया आपको, NABL, NABCB और NABH। NABL लैब टेस्टिंग और कैलिब्रेशन के लिए, NABCB सर्टिफिकेशन बॉडी को मान्यता देने के लिए और NABH हॉस्पिटल और हेल्थ केयर के लिए। प्रत्यापन का सीधा फायदा ये है कि जो रिपोर्ट या सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त जगह से मिलता है उसे दुनिया भर में भरोसे के साथ स्वीकार किया जाता है। पहली बार 9 जून 2008 को मनाया गया था ये दिवस। ILAC और IAF जिसके बारे में हमने आपको बताया, ILAC अर्थात इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कोऑपरेशन और IAF इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम, इन दोनों ने इसके विस्तार पूर्वक इसमें योगदान दिया और इसे दुनिया भर में प्रत्यापन के फायदे को लोगों तक पहुंचाया। प्रत्यापन असल में करता क्या है अगर सीधा समझे, मान लीजिए आपने खून टेस्ट कराया, बिना NABL वाली लैब रिपोर्ट सही है या नहीं भरोसा नहीं। NABL मान्यता प्राप्त लैब से अगर आप करवाते हैं तो उसके रिजल्ट को, उसके टेस्ट को और जो रिजल्ट उसमें आता है उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर टेस्ट हुआ माना जाता है और इस रिपोर्ट पर हर कोई भरोसा कर सकता है। यही काम प्रत्यापन करता है, क्वालिटी पर सरकारी मुहर लगाता है। पिछले 3 साल का जो थीम रहा वो 2023 में सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड अर्थात आयात निर्यात में भरोसा, 2024 में एम्पावरिंग टुमारो एंड शेपिंग द फ्यूचर अर्थात सस्टेनेबिलिटी और डिजिटल दुनिया, 2025 में एम्पावरिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अर्थात छोटे बिजनेस को ग्लोबल मार्केट का मदद देना। अब आपके दिल में या दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इसकी ज़रूरत क्या है। इससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, इससे निर्यात बढ़ता है। NABL टेस्टेड प्रोडक्ट को विदेश में बिना दोबारा जांच के ही उसे स्वीकार किया जाता है। NABH हॉस्पिटल मतलब इलाज के तय मानक को फॉलो करते हैं और इससे फर्जी सर्टिफिकेशन वाले पकड़े जाते हैं।
QCI, NABL, NABCB भारत में सेमिनार, वेबिनार, अवार्ड रखते हैं। लैब, इंडस्ट्री और सरकारी अफसर मिलकर चर्चा करते हैं कि प्रत्यापन को और बेहतर कैसे करें। दुनिया में 100 देशों से ज़्यादा के बीच एक ILACMRA एग्रीमेंट है, मतलब अगर कंपनी का प्रोडक्ट भारत की NABL लैब में पास हो गया तो अमेरिका, यूरोप, जापान सब उसे मानेंगे, दोबारा टेस्ट नहीं करेंगे। इसी चीज़ की खासियत के लिए आज का दिन, यानी कि माफ़ कीजिए, 9 जून का दिन मनाया जाता है, जिसे कहते हैं विश्व प्रत्यापन दिवस। अंग्रेजी में इसे कहते हैं वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे।

से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, मेरे हमराही गर तुम ना होते। वैसे हम हमराही हो ना हो, लेकिन राही मतवाले तो जरूर हो सकते हैं। और मुझे मालूम है कि जो

हम में से जिन लोगों को घूमने का शौक़ है, यानी कि भ्रमण करने का शौक़ है, टूर और टूरिज़्म बहुत चाहते हैं, बहुत जागरूक हैं और जानना चाहते हैं जगह जगह के बारे में, वो हमारा ये कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं सुनना भूलते। जी हाँ, आपका एक बार फिर से स्वागत है राही मतवाले में, और मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम आकाशवाणी कोलकाता संचयिता से। अब बारी है आपको बताने की कि आज हम किस स्थान को लेकर आए हैं आपके लिए। तो बता दें कि आज हमारे पिटारे से खुल रहा है नालंदा बिहार। जी हाँ, नालंदा बिहार का जो भ्रमण है, इनफैक्ट बिहार शब्द आया ही है विहार से। नालंदा विहार या नालंदा महाविहार प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र था, ये माना जाता है। आज ये बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज कहते हैं। यहाँ की यात्रा ज्ञान, इतिहास और शांति का अनुभव कराती है कि ये स्थल उस वक्त, उस जमाने में क्या हुआ करती थी। आपको बताना चाहेंगे कि नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। धीरे धीरे ये विश्वविद्यालय बन गया जहाँ 10,000 से अधिक छात्रा और 2,000 आचार्य रहा करते थे, अर्थात अध्ययन करते थे। 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 आचार्य, आप समझ सकते हैं ये संख्या कोई छोटी संख्या नहीं थी। और सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, मध्य एशिया से विद्यार्थी यहाँ बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, गणित और खगोल पढ़ने आया करते थे। आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा ह्विंग सैंग के बारे में, प्रसिद्ध यात्री ह्विंग सैंग। जी हाँ, उन्होंने भी आकर काफी दिनों तक अपने जीवन का बहुमूल्य समय यहाँ बिताया। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद ये विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आप जाकर नालंदा में क्या देखेंगे, क्या घूमेंगे। तो आपको पहले ही बता दें कि सबसे आकर्षक स्थान जो है वो है नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर। लाल ईंटों से बने विशाल विहार, मंदिर, व्याख्यान कक्ष और छात्रों के जो चीज़ें थीं, जो वस्तुएँ थीं, उनका अवशेष आज भी आपको देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल खंडहर के ऑपोजिट में यानी कि विपरीत एक म्यूजियम में रखा हुआ है। वहां की स्थापत्य कला को देखकर अंदाजा लगता है कि उस समय शिक्षा की व्यवस्था कितनी उन्नत थी और कितने उन्नत तरीके से उसे किया गया था। साथ ही नालंदा पुरातत्व संग्रहालय वहीं पर स्थित है। वहां खुदाई में मिली बुद्ध की मूर्तियां, सिक्के, मोहरे और ताम्र पात्र भी रखे हुए हैं। संग्रहालय सोमवार को बंद रहता है, इसलिए अगर आप जाना चाहते हैं तो इस प्रकार जाएं ताकि सोमवार आप वहां न रुकें, और सोमवार को सब कुछ आपको नहीं दिखेगा, इसलिए सोमवार जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। साथ ही वहां पर ह्विंग सैंग की मेमोरियल हॉल भी है। चीनी यात्री ह्विंग सैंग की स्मृति में बनाया गया वो भवन है। अंदर उनके यात्रा से जुड़ी तस्वीरें और उनके द्वारा लगाए गए ग्रंथ, ये सारे रखे हुए हैं। अब बात करते हैं नवनालंद महाविहार की। खंडहरों के पास ही स्थित आधुनिक शोध संस्थान जहां आज भी पाली और बौद्ध दर्शन पढ़ाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ही दूर पर, बस दो किलोमीटर की दूरी पर खंडहरों से, वहां पर स्थित है प्राचीन सूर्य मंदिर जहां छठ पर्व बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है और एक बहुत बड़ा मेला लगता है। अब सवाल ये है कि नालंदा आप पहुंचे कैसे। तो आपको बता दें कि तीन मार्ग है, हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग। तीनों मार्ग से आप नालंदा पहुंच सकते हैं। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पटना है जो नालंदा से लगभग 90 किलोमीटर दूर पर है, और अगर रेल मार्ग से जाते हैं तो राजगीर रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर और बिहार शरीफ स्टेशन 15 किलोमीटर दूर है। पटना से भी सीधी ट्रेन आपको मिल जाएगी। और अगर कलकत्ता से आप जाना चाहते हैं तो आपको बख्तियारपुर में आपको उतरना पड़ेगा और वहां से आपको राजगीर जाने वाले ट्रेन पर, रेलगाड़ी पर आपको सवार होना है। सड़क मार्ग से अगर जाएं

पटना, गया, राजगीर के लिए बस हर जगह से छूटती है और आप आसानी से उसके ऊपर, मतलब उस मार्ग से जा सकते हैं। सही समय क्या है इस जगह का, इस स्थल का? बहुत ही सुंदर स्थल है, शांत, और कहते हैं ना कि दिल को सुकून पहुंचाने वाला, खास करके जो एक ज्ञानवर्धक जो फीलिंग्स है वो आती है यहाँ पर पहुंचने के बाद। तो यात्रा का जो सही समय

अक्टूबर से मार्च का समय, अक्टूबर से मार्च का समय सबसे बढ़िया माना जाता है। मौसम ठंडा रहता है और घूमने में आसानी होती है। गर्मी में यहाँ बहुत तेज़ धूप रहती है, तो आप गर्मी का सीज़न बिल्कुल भी, इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा बिहार के लिए ना रखें। जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये कि खंडहर का क्षेत्र बहुत बड़ा है। 2 से 3 घंटे आप लेकर चलें और तब जाकर आपको पूरे स्थल का दर्शन होगा और एक अनुभूति होगी। गाइड को लें तो इतिहास समझना आसान हो जाता है। साथ ही पानी की बोतल और टोपी ज़रूर रखें, लेकिन पानी की बोतल इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंकें, उसे केवल कूड़ेदान ही में डालें। और एक ख़ास बात, भारतीयों के लिए टिकट जो है वो 40 रुपये हैं और विदेशियों के लिए ये संख्या 600 रुपये है। और अब आपको एक, वो कहते हैं ना, निष्कर्ष अगर बताएं तो नालंदा की यात्रा सिर्फ पत्थरों और ईंटों को देखना नहीं है, ये उस गौरवशाली परंपरा को महसूस करना है जब भारत विश्व गुरु कहलाता था। यहाँ की शांति, यहाँ का ज्ञान, यहाँ का ऊर्जा आज भी हवा में बहता नजर आता है। तो मेरे इन बातों को सुनकर आप मुझे ये बताएं कि आप कब जाने का प्लान कर रहे हैं, और अगर राजगीर और पावापुरी भी घूमना चाहते हैं तो 2 दिन अलग से रख लें। तो ये थी आज नालंदा विहार के बारे में। उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। आपको यात्रा अगर करना है तो मेरी बातें सहायक होंगी। अब बौद्ध धर्म से जुड़ा मैं एक गाना आपको सुनाना चाहूँगी, जो फिल्म बनी थी अशोका। बौद्ध धर्म की बहुत सारी झलकियाँ हम उस फिल्म में देखते हैं। तो आइए उस फिल्म से सुनिधि चौहान की आवाज़ में सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

अशोका से आपने सुना ये खूबसूरत गीत, और इस गीत के साथ आप हमें अनुमति दीजिए। वैसे बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता संचयिता, कार्यक्रम का नाम दर्पण, और हमारा और आपका साथ 7:30 से 8 बजे तक का मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, और 8 बजे से आप सुनेंगे फिल्मी गीत। तो इसके साथ ही पॉपी को दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी आपके साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए और लोगों की मुस्कुराहट का वजह बनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वह आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि NDA राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन,

0: एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर

0: प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 2,300,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 1,600,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की

0: आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए

0: Cerca Kamışehri. ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़े पैगाम लगे, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत यूएन जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका ही कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले अगर

0: हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, तेजस, ब्रह्मोस और आईएनएस विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
1: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें दो तीन महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें सीडीएस जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने यहाँ, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व करते पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है 26 जनवरी में, तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूल चूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
0: शेखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है उसी का

0: एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से, जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है। और MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जैसे आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेकर चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी, सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है, वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं भी। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी UPI पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव गांव तक UPI पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें, इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में UPI और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड रेशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम

0: का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है, बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूं। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख में अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है, उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है। आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में, कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री उसका

कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल, वो जो नारा है मोदी है तो मुनकिम है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है।

0: नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है आनंद जी। जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं, आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार और नागरिक और देश प्रथम ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे, कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्रातिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है, हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहाँ, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट, हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने

0: जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जोखिम भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई जो भवने थे, भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी। तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था कि सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम इस समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल, विकसित भारत, सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है, आनंद जी मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, भारत नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।

0: तो 40 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। तेहरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों पर जवाबी सैन्य अभियान शुरू किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर हिंसक दमन के लिए पाकिस्तानी प्रशासकों की निंदा की। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
2: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्र हित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का इस सिलसिला और भी तेज होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक

0: प्रस्ताव पारित किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने समझौता करने में बहुत देर कर दी है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। उधर ईरान ने कहा है कि रात भर हुए हमलों के बाद वह अमेरिका के साथ राजनयिक संबंधों का फिर से आकलन करेगा। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास ईरानी ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में उसके ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि बार बार युद्ध विराम उल्लंघन के बाद ईरान अमरीका के साथ राजनयिक संबंधों पर समीक्षा करेगा। ईरान ने केशम द्वीप और सिरिक बंदरगाह पर हमले की खबर दी है। ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास और बाद में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर विस्फोटों की भी सूचना दी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष पूजा।
0: यूक्रेन ने रूस के अंदरूनी हिस्सों में आज कई लंबी दूरी के हमले किए जिनमें सैन्य और ऊर्जा परियोजनाओं को निशाना बनाया गया। यूक्रेन रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हमलों में कई महत्वपूर्ण सुविधाओं को निशाना बनाया गया जिनमें एक सैन्य कारखाना भी शामिल है, जिसके बारे में उन्होंने दावा
0: कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दमन के लिए पाकिस्तान के प्रशासकों की हिंसक कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। संगठनों ने इंटरनेट बंद करने, अवैध गिरफ्तारियों और बल के प्रयोग का हवाला देते हुए स्थिति को गंभीर बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन ने वहां एक संगठन को आतंकवादी समूह घोषित करने के फैसले की निंदा करते हुए इससे संगठन की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। नासा ने अगले साल के अंत में होने वाले अपने अगले आर्टेमिस तृतीय मिशन के लिए 3 अमरीकी अंतरिक्ष यात्रियों और एक इतालवी अंतरिक्ष यात्री के नाम घोषित किए हैं। यह मिशन स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन के चंद्रयानों का पहली बार कक्षा में परीक्षण करेगा। अमरीकी अंतरिक्ष यात्री आंद्रे डगलस, फ्रैंक रूबियो और रैंडी ब्रेसनिक तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के इतालवी अंतरिक्ष यात्री लुका परमिटानो आर्टेमिस तृतीय के चालक दल में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बुल्गारिया के सोफिया स्थित राष्ट्रीय ऐतिहासिक संग्रहालय का दौरा किया। श्री जयशंकर ने कहा कि उन्होंने हजारों वर्ष पुरानी कलाकृतियों के महत्वपूर्ण संग्रह का अवलोकन किया। डॉक्टर जयशंकर सोफिया की यात्रा पर हैं, जहां वे बुल्गारिया के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रेस्टिलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर से श्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई संदेश आ रहे हैं। विश्व नेताओं ने भारत की बढ़ती शक्ति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आश्वासन, 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। तेहरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों पर जवाबी सैन्य अभियान शुरू किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी चेतावनी। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, "The people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress." He said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace." He said, "The lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right."
3: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है, तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्ष

मैं बुड्ढो लंबो लंबो मैं जादू वाला, जो रोता आए हंसता जाए पीकर मेरा प्याला छू।

सर पे चांद दिखेगा यानी होगा टकला। बच्चा जैसा भोला होगा तेरा दिल भर जानी, थोड़ी उसकी नाक बहेगी सोना मुख से पानी। एक निकम्मा नाकारा लिखा है भाग में तेरे, एक निकम्मा नाकारा लिखा है भाग में तेरे।

0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तू एक प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे